नेपाल ख नेपाल भाषीय समाचार जिउ पेस पाखिन्दिना दिस थौ नेपाल सम्बत चिन्सा पिकुद गुलाथो नाग पञ्चमी नाग पञ्चमी थौ परम्परा कथ नाग या पूजा या ना हना चङ्गुदो छे छे या छे या लुखे विधि नक्सा नाग या किपात या पूजा याइगु तजलिजिदु नाग या किपा तल धासा छे नाग ताहा बिचिपिन्स पङ्ग मयाइगु व मि लाप्सा व मलख चुन मग्याइगु कथ जुइगु थ्यातगुदु नेपाल पञ्चाङ्ग निगा विकास समिति पूर्व दुज प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई थते धैदिको ख थौ सोनिगया नाग पुखु तद यलया नाग दह खोपया तिथि पुखली मो म भक्तजनपी नाग पूजा यना चुङ्गुदु भेरी नगरपालिका दुई जाजरकोट फारुल्या चलख लाना सिप्नुगुल्या सोम थेङ्गुदु थो निहने शनिबार चलकुतुया बेपत्ता जुपी चे सोद दुम रति खत्री वो ओयाका ने पेद दुम ओम सिंह खत्री सिनाचुङ अवस्था लुयावगु ख चलखे लानाचुङ अवस्था उद्धारे खते जुपी सुरक्षा कर्मी पिनुगु पुचल आइतबार सुते इमुगु सिम लुइकुगु ख शनिबार बहनिए ओहे वडा चिसापानी न चल कुतुङ्गु ख चलखे लाना नेद या पिम्बहादुर कार्की ओ गौरी गाउँ या चिनपेद दुम हरिश बिक तनाचुङ्गुदु ने निद दुम केदार कार्की या त उतार याना वास यागु नीति नेपालगञ छुएगु जले लफिहे सिगु ख चलखे लाना खुम खापा जुगुदु इमुगु सुर्खेत ओ जारजोरकोट अस्पताल वास जुया चुङ्गुदु आ घटनास्थलले सुर्खा कर्मी पि ठेङ्का मालिक ज्या जुया जाजरकोटिया डिएसपी बुद्धिसागर पुरी जानकारी ब्यादीको ख बागलुङ्गिया निम्सी खोला गाउँपालिका दुई धारे तोले चल कुतुङ्गुना च्याखा छे सिङ्गुदु पिखा छे दुगु अन चल या उच्च जोखिमे दुगु निम्सी खोला दुई या वडा अध्यक्ष कुबीर विश्वकर्मा धाइदिएको ख नेपाल आल निगम थौ निसे ग्यास उद्योग नियुक्त यना तगु विक्रेता पाके नियमित प्रक्रिया कथ ग्यास मिगु इनेगु व्यवस्था चुलाको गु धागुदो निगम मिग सूचना जारी यासे तथे धागु ख थे झोले मिग ग्यास विक्रेता महासङ्घ नेपाल डिलर पाखे ग्यास बिक्री वितरण याना उपभोक्ता त राहत बित सरकार याके इनाप यागु ख ग्यास उद्योग ओ ब्याग्लन ब्याग्लन थासे बिक्री केन्द्र कोचिना ग्यास मिगु ज्याजुया उपभोक्ता तेस मुहामुरुको दुःख सिगु धासे मासँग सटेको दिलरिया पाखे उपभोक्ता त अपुक ग्यास क्या दैको व्यवस्था या त इनाप यागु ख सरकार पश्चिम नेपाल या चल वङ्गु थासे भौगर्भिक अध्ययन या तिङ्गुदु राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मिग चुङ्गु मनसुन प्रतिकार्य कम मान पोस्ट या मुज्या रोल्पाया थवाङ वो सुन सहारी गाउँपालिका बाजुरा या त्रिवेणी नगरपालिका वो जाजरकोट या भेरी नगरपालिका या लिचो लागु थासे थथे अध्ययन या तेङ्गु ख कमान पोस्ट प्राधिकरण नेतृत्व सुनुदुनी ज्या याइगु लागे थिनिगु थागुदु संसदीय निगुली सदनीय मुज्या थौ चुनि तेङ्गुदु इनेसिया छता इलेस सिंह दरबारे चुनिगु प्रतिनिधिसभा मुज्या थिथि विधेयकी विचार या धैको प्रस्ताव न्यौबैगु ज्याधलदु सभामुख डोल प्रसाद अर्याल खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक 2083 या त विचार या धैको प्रस्ताव या त न्यौबैगु ज्याधलदु अथे महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीतावादी बालबालिका सम्बन्धी नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 या त न्यौबैगु ज्याधल अथे वेकल मानव बेचबिकन तथा ओसार प्रसार नियन्त्रण नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 या त न विचार या धैको प्रस्ताव न्यौबैगु ज्याधलदु थोयदोथी परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल राजधानी नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 या त विचार या धैको प्रस्ताव न्यौबैगु ज्यादलदु अथे राष्ट्रिय सभा मुज्या छता इजुया चिन्यागु मिनेटे चुनिगु ज्यादलदु मुज्या कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक 2083 या त दफा दफा सल या नीति विधान व्यवस्थापन समिति छेमा धाइको प्रस्ताव न्यौबैगु ज्यादलदु
नेपाली काङ्ग्रेस संस्थापन इतर पक्ष सोनुयङ्क या राष्ट्रिय त मुज्या थिथि न्यागु धल को छुगुदु पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोर्याल्या कजुते साउन 29 गते निसे ये जुगु त मुज्या चिन्पेगु त मुज्या त्याकुगु केन्द्रीय कार्य समितिया कोचिना वो गोस्या चिन न्याको गु त मुज्या कोचा के गु कथ को छुगु साजिक यागुदु भारतीय प्रधान सेनापति जनरल धीरज सेठ ये थेङ्का दिगुदु नेपा थेङ्का छायादिम प्रधान सेनापति सेठ रक्षा मन्त्री या जिम्मेवारी क घना उयाचना दिम प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ओ नेपा या प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल या त नाप्लाइगु ज्या चोदु 2026 या जुन 30 भारतीय प्रधान सेनापति ज्यादिम सेठ या त नेपाली सेना या मा नर्थ महारथी या दर्जा बिगु ज्या जोदु थौ राष्ट्रपति भवने कया त मानार्थ महारथी दर्जा बिगु ज्यादलदु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नायक केपी शर्मा ओली एमाले पद व्यक्तिगत स्वार्थ नीति मजुसे दे या त हिकेगु जनता या सेवा या त देखुगु धैदिगुदु नेकपा एमाले चापाम हिग वीरता मोडे कोसागोगु मिसन पार्टी जागरण अभियान उले ज्या ज्या जोसो नायक ओली पार्टी या नेता ओ कार्यकर्ता या त अग्रज या त्याग ओ बलिदान सिका ओ थुइका झ्या हुने त इना याना दिल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले तचोङ्क वा वया लिपाङ्गु दिने दे या तिथि थासे खुसीबा ओ चल लिसे सडक अवरोध जुगो जनधन या क्षति या त कया दु नुग्ल निसे दुःख पुङ्कुगुदु नेकपा एमाले या केन्द्र प्रचार लिसे प्रकाशन विभाग या प्रमुख धीरज आचार्य पा खेम हिग पितुग विज्ञप्ति प्राकृतिक विपद लाना मधुपिन्त श्रद्धाञ्जली पुङ्कुसे शोके लापिन्त दु नुग्लिसे विचार पुङ्कुगु ख नेपा या साहित्यिक या हस्तिजी जनकवि दुर्गलाल श्रेष्ठ मन्त वेक गुइ सोध या बैसे मिग थगु छे कम्फर्ट हाउसिङ फिजसी मरुगु ख ता यी झ निसे म मफिया चुनादी म श्रेष्ठ पेनहु झ तचोएको म मफे व नर्भ अस्ताले पढ्ना यागु खसा मिगो सनीले डिस्चार्जना छे हगु ख किपु पाङ्गा या पत्रकार सचिर महर्जन या मा सानमाया महर्जन अमन्त ता इलनी से पि उसा मध्या चुनादी म वेक चे हेद या बैसे किपु या अस्पतालले साउन 30 गते मधुगु ख पत्रकार महर्जन या अबु ओ ज्योतिष विज्ञ चैतलाल महर्जन छु द झने मध्य धङ्कुगुदु मधुम महर्जन या सोम क्या ओ पेम म्यादी सर्वोच्च अदालत जनस्था वा पौया सम्पादक किशोर श्रेष्ठ त थौ सोमबार अदालत उपस्थित या के त आदेश बुग्ने थौ उपस्थित या किगु जुगुदु गैर कानुनी रूपमा जुङ्गु वा तत्काल प्रतिमागु माग यासे श्रेष्ठ जहाँ सरस्वती श्रेष्ठ दायर यागु बन्दी प्रतिचीकरण रुते सुनवाई यासे अदालत शुक्रबार थजियागु आदेश बिगु ख सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले छगु इजलास पत्रकार श्रेष्ठ त वेक या छे ओ ज्याकु थि बरामद यागु संचार उपकरण नाप सोमबार अदालत उपस्थित एके त आदेश बिगु ख नेपाल भाषा एकेडेमी गोसाले सूचना संचार ओ प्रविधि खेले नेवा ज्याजो छेलबुला ओ चिगु दायित्व विशेष सल मु ज्या एकेडेमी हल्किप्री कोचागुदो एकेडेमी चान्सल मल्के सुन्दर या नासुई छ्यान्जे महेन्द्र गोपाल कर्मचारी ह्याकादीको ज्याजो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री शैलेन्द्र प्रसादचार्य जुया मु फासी औपचारिक रूपमा यहाँको ख थम मचानिसे न्यान ओया चुनागु दमन थौ तकन जुया चुङले उकिया विरोधे स्वस्फूर्त रूप हे भाषिक आन्दोलन बोती दया चुङ्गु ध्यादिसे उकिया त निरन्तर गुवाली जुया चुनिगु बच वेक्ल थैदिगुदु तुङ या आक्रमण पाखे चितवने छम्ममुनु खापा जुगुदु राप्ती नगरपालिका एक डिपार्ट बस्ती दुवा व म तुङ या आक्रमण पाखे खुइद दुमा ठाकुर अधिकारी खापा जुगु ख खापा जुम अधिकारी या त भरतपुर सरकार अस्ताले वास एना चुङ्गु दुधासा थु या त मिग हे नियन्त्रण क्याधङ्गु दु इन्डोनेसिया या फ्लोरेन्से बोगु त फुखा लाना सिप्नुगु ल्या निय सुम थेङ्गु दुधासा न्यादो मुनु त पङ्गले लागुदु फुखा बुवे ढुङ्का आतको सोस वे पुछगु ली फुखा बुवे ढङ्कु गुदु
थौ गण्डकी लुम्बिनी वा सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लागा या आपल थासे मध्य प्रदेश नाप कोशी व बागमती प्रदेश या तराई लागा मो थासे नजना लाप्सा तोया वा वैगु तुकमा या गुदु गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश या पहाडी लागा व लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लागा छगुनीको थासे छर वा वैगु तुकमा या गुदु लुम्बिनी प्रदेश या तराई लागा या छगुनीको थासे आफ्नो झर वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान शाखा थाहा गुख मिग सुनिगले नि च्यागुप्टी न्यागु डिग्री सेल्सियस या क्वाजो लुगु ख थौ सुनिगले न्याता इजुया नि न्यागु मिनेटे लुगु सूर्य शनिलया खुता इजुया पि न्यागु मिनेटे बी नेपाल भाषे बुख कोचाल शुभ्या।

अब प्रस्तुत छ आज रेडियो नेपाल बागमती प्रादेशिक प्रसारणमा साँझ 6 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमहरूबारे जानकारी।

0: रेडियो नेपाल ग्याम तामाङ घेरी सानगुर पिनबा तिनी सोमची निछा दिङ छोबा मुला चुनौना अवसरी रेडियो नेपाल राङला न्याङखेन कादेदा जबडानबा फुलबा मुला खावा रे कादेरिन राङ कादेला रो सल्लाह सुझाव याङसी चिबा मानबा मुला चु रेडियो नेपाल हिन्दा तामाङ सानगुरी राङनी दा ढेन मुला गा इन्दिरा थिङ दोक्से गाछा संचार थुमग्याम तामाङ घ्वेरी सानगुर पिनबा राधा ढानबान तिनी सोमचुई निचा तामाङ प्रसारण ढिन्चेन युल नाङरी ढाङबान मुला 2051 साल भदौ घिक्ला कुनो रेडियो नेपाल ग्याम तामाङ घ्वेरी सानगुर निवा राधा ढानबान तामाङ घेन्दुन कादेसे ज्याबा ढानबा किनबा पिनबा लाबान मुला प्रसारण ढिन्चेन लाभसरी दिङे दाङसे लोलो लोलो संचार थुम्री घेलाबा सानगुर बोन कादेदा ढेन लाबान खाबा मुला चुपालसे तामाङ पत्रकार संघ संज्ञा समिति से याम्बुला बुद्ध नगर री सेङबा गेखोरी तामाङ मिडिया अवार्ड 2083 ग्याम जगत तामाङ काभ्रे थेन जमुना तामाङ मकवानपुर दा ढेन लाबा मुला ढेन ताबा कादेदा ग्रेन डोन्पो प्रतिनिधि सभा सदस्य परशुराम तामाङ थेन संघ लाचोहो नेत्र तामाङ से ढेन छियो थेन टाङ्गा पिन्सी ढेन लासियुबा मुबा सुङबोन डोलो प्रसाद अर्याल से प्रतिनिधि सभाला सदस्य से संसदरी तेवा तामला जवाफ पिनबारी काइब्लोन्दा रुलिङ लास्युबा मुला विपक्षी दलला सांसद से चुङाछाला लाना राङबा चिसाङरी काइब्लोन ग्याम जवाफ खातोबा पाङबान रुलिङ लाबारी मोइजेन लाबान खासियुबा मुबा सुङबोन अर्याल से प्रतिनिधि सभाला निमाओली 2083 गोर्ङा नियम अनुसार प्रतिनिधि सभाला सदस्यला जवा फिनबारी काइब्लोन दा सुङबा खिन्ला चुङाछा प्रतिनिधि सभाला तिनीला चिसाङरी सांसद कादेसे लाना नाम ताइबासे युल्ला लानन जोङ कादेरी भाल डुइसे लामा लानन छेती ताबा मुला कान सोबा एलपी ग्यास आयाङबा राङबा ताम्री सरकारला ध्यान छेङना लासियुबा मुबा सांसद कादेसे रोलपाला लानन गाउँपालिकारी निबा ढुइसे हप्ता निरी मेन्दो निचुई नि मिनी सिबा मुला बिसामा मेन्दो नि घाइते ताबा मुला सुङबान माबा कादेदा माइबा उद्धार लाबा थेन राहतला से कादे योनान धोना लाबारी सरकारला ध्यान छेङना लासियुबा मुबा तिनीला चिसाङरी नोन विपक्षी सांसद कादेसे रेसी विरोध लाबा मुबा राष्ट्रिय सभाला तिनीला चिसाङरी संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक 2083 दा काठुई लाबारी विधायन व्यवस्थापन समिति पुइदोजी विवाह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत लाबा मुला चिसाङरी सनम रिथेन पर्यावरण ब्लोन गीता चौधरी से संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक 2083 दा काठुई लाबारी विधायन व्यवस्थापन समिति पुइदोजी बिसी थान्छ्युबा प्रस्ताव सभा ला सर्वसम्मति से स्वीकृत पिन बाखिन्ला चुराङ लासिन चिसाङरी ब्योन ज्ञात थेन रोजगार ब्लोन रामजी यादव से ब्योन कादेदा स्यान्दो ह्युल्डी निबादा काबारी राङलान ह्युल्डी गे याङबा सोबारी छार रोजगारी ठिम सोबान मुलाबिसी सुङबा मुबा चिसाङरी सांसद कादेसे ह्युल्डी भाल थेन दुइसे लानन मिनी सिबा थेन घाइते ताबा मुला सुङबान स्थानीय तहारिन तोबा से कादे पिन्सी पीडित कादेदा धुइरिन उद्धार लासी राहत पिनबारी सरकार दा पाङबा मुला चुराङ लासिन चिसाङरी सांसद कादेसे मिनी कादेदा कान सोबा ग्यास याङबा सोबारी सरकारला ध्यान छेङना लासियुबा मुबा चिसाङरी सांसद कादेसे धाते अनलाइन ठगी लेबा विवान चुसे असुरक्षा नुन लेना लाबा मुला सुङबान चुराङबा ठगिदा काबारी सरकार से योनान तिलाई लातोला बिसी सुङबा मुबा राष्ट्रिय सभाला चिसाङ दोषी रेङ्गेन धिनीला गिकै न्यासी चुइङा मिनेट्री चिबा गेखोर मुला राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण थेन व्यवस्थापन प्राधिकरण से नाम ताइना लावा न्यून चापीय प्रणाली भारत ग्याम नुप नेपाल क्यार खावा से तिनी मुन ग्याम नाङ्गार थेन रेङेन सुदूर नुप थेन कर्णाली प्रदेशरी लानन नाम ताइबारी खाम्बा ताबासे सतर्क ताबारी मोइजेन लाबा मुला प्राधिकरण से तिनी सानगुर बोन वाल सेङसी जल थेन मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से लाना नाम ताइबारी खाम्बा सतर्क ताबारी पाङबा मुला कञ्चनपुरला महाकाली गान्धीरी क्युई लेसी खावा लिचा शारदा ब्यारेजरी गोर्ब्ली पाङ्रे मोटर कादे सेङबारी आपिनबा ताबामुला इलाका प्रहरी गेजाङ गड्डा चौकिला ग्रेन प्रहरी नायब परीक्षक जीवन गुरुङसे सुङबा अनुसार तिनी स्यो हेन्से महाकाली गान्धीरी क्युई लेसी ला घिक क्युसेक धोबा लिचा ब्ली पाङ्रे मोटर सेङबारी आपिनबा ताबा खिन्ला चुराङलासिन जलथेन मौसम विज्ञान विभाग से हुला जाजा गान्धी कदेरी क्युई लेबारी खामला विमान सतर्कता बारी मोइजेन लाबामुला विभाग से पाङबा अनुसार किरिन गान्धी बर्दिया जलमापन केन्द्री क्युई लेबासे माचा तटीय थुमथेन गान्धी गामला ब्लुम्बा ग्ला कादेला मिनिदा सतर्कता बारी पाङबामुला नेपाली सेनासे जाजर कोटला भेरी नगरपालिका नि रिसाङ थुम्री निबा ढुइसे प्रभावित ग्याजासोम बिमा लानाला उद्धार लाबामुला ढुई ग्याम पीडित कादेला उद्धार लाबारी भवानी दलगण ग्याम निबा टोलीसे स्यान्दो सुरक्षा निकाय थेन डिक्सी तिनी थेनी कादेदा उद्धार लासी सुरक्षित ग्लारी भोरबा मुला बिसी सैनिक जनसम्पर्क थेन सूचना निर्देशनालय से पाङबा मुला सेनाला टोलीसे ढुइसे नाङसी घाइते ताबा मेन्दो ब्रेला उद्धार थेन मेन्दो ब्लिला सिबा लुहिरो तेबा मुला बिसी निर्देशनालय से पाङबा मुला नेपाल आयल निगमसे तिनी हेन्से सम्बन्धित ग्यास उद्योगसे नियुक्त लाबा चुङबा कादे ग्याम नियमित थिम अनुसार ग्यास चुङबा ग्लुबा व्यवस्था ढिग्ना लाबा मुला बिसी पाङबा मुला निगमसे तिनी सूचना छिपान राङला ङाम्री मुबा ग्यास चुङबा कादेदा सम्पर्क लासी ग्यास ग्लुबारी मिनी कादेदा मोइजेन लाबा मुला निगमसे ग्यास पिनबा घेदा व्यवस्थित सोबारी रादाङसे चुङबा मिनिदा मिन ठेगाना सम्पर्क नम्बर सिलिन्डर छ्याम्ला विवरण दिङे धाङसे स्योला कु ह्यामा नाङ्री पिनबारी छोङबोन कादेदा पाङबा मुला भाइ ग्योइला वाइखा ब्रिखेन दुर्गा लाल श्रेष्ठ कुचुई सोम ढिङ्री ढोङबा मुला बुढा निलकण्ठला राङ्लान दिम्री तिलमा मुना श्रेष्ठ ढोङबा हिन्ला बिसी नेपाल ग्योई एकाडेमी चान्सलर मल्ल के सुन्दर से सुङबा मुला डुचुई दिङ हेन्से सेमलेङला थुम्री गेलाबन खासुबा श्रेष्ठ से बाई ग्योइला छ्याम नेपाली रिनोन वाइखा वाइला छ्याम च्यान्दो बिदारिन ब्रिस्युबा मुबा नेपाल भाषा सेङजाङसे निचुई धिङ गाछा श्रेष्ठदा जन कवि बिसी ढेन लाबा मुबा तिनी नागपञ्चमी प्रिबा हिन्दू धर्म तेन्बा कादेसे राङ्ला रिम्ठिम अनुसार मोइबोलासी धाङबानमुला दिम्ला ग्रेन माफ्री लुला फोटो थान्सी चुप्रिबा धाङबामुला दिङे दाङसे साउन शुक्ला पञ्चमीला कुनु चुप्रिबा धाङबा लाबामुला तिनी याम्बुला नाग पोखरी थिएन टौदह भक्तपुरला सिद्ध पोखरी जाछ्याम हिउल नाङला लु ग्योइ कादेरी मोइबो लाबारी मिनी कादे राफ्रु ताबामुबा चुराङलासिन बैतडी ग्याम सुदूरपश्चिमला पहाडी जोङ रे तिनी ओल्के प्रिबा धाङबानमुला पहाडी थेतमासे दिङे दाङसे भदौ सङ्क्रान्तिला कुनु ओल्के प्रिबा धाङबा लाबामुला तिनी हेन्से धुलीखेल अस्पताल डी लुई बिमा सेवा तिबामुला अस्पताल से बिमा दा बिसी करोड भ्रे टाङ्गा याङबामुला अस्पताल से बोर्ड ग्याम सेवारी सेवा पिन्दोबा टाङ्गा याङबा लिचा निबा असा चुई घाला कुनु हेन्से लुई बिमा सेवा भन्द ताबामुबा लुई सेवा बिमा दिङे दिनीरे आइतबारला कुनु थेन सार्वजनिक विद्याला कुनु आपिनबा ताबामुला बर्द गोरिया गाउँपालिका गिक मुडा चाम गाम्री ट्रक से ठोक्सी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सल्लाहकार समिति सदस्य सावित्रा सापकोटा सिबामुला तिनी स्योरी बर्द गोरिया गिकला मुडा चाम गाम्री सापकोटा क्रेबा स्कुटर दा ट्रक से ठोक पामुबा डोङबा सापकोटा 2074 सालला स्थानीय तह चुनावरी बर्द गोरिया गाउँपालिकाला रोचोहोला दाण्डी एमाले ग्याम ढासियु पामुबा सोलु खुम्बुला सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका निसला गारमा माध्यमिक लोभखाङ्री गिक्छारेम सिक्दै कमाउँदै गेखोर ती बामुला कोशी प्रदेश सरकार से फेवा बजेट ग्याम सानम ज्ञान केन्द्र सोलु खुम्बुला रोरी ती बा गेखोरी लानन सेला खु खेती लाबामुला कछ्या चुई घिक थेन चुई निरी ब्रिबा डोबा लोबोन कादेचे चु गेखोरी पो किन बामुला बिसी लोभखाङला हेड मास्टर विनोद सिंह तामाङ से सुङ बामुला स्यान्चिबन मोबा सानगिर जिन्जी फ्याफुल्ला
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: नेपालको समावेशी आवाज

ई रेडियो नेपाल थिक हरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुन्नल जाय। मधेसक प्राचीन मिथिला क्षेत्रमे आइ लग पाँचे पर्व मनाओल जा रहल अछि। एहि पर्वमे नाग सर्प प्रजातिक जीवक पूजा कऽ मनाओल जा रहल अछि। सामान्यतया सौर मास साउनमे पड़लाक बावजूदो एहि बेर अधिक मास अर्थात मलेमास भादवमे भेलाक कारणे ई समय पाछू पड़ल मैथिल कर्मकाण्डी सब बतौलनि अछि। हिन्दू मैथिल परम्पराक लग पाँच पर्वमे घरक चारू भीतामे गायक गोबरसँ नागक चित्र कोरल जाइत अछि। गोबरसँ कोरल गेल चित्रमे दुवि सिन्दूर अक्षता चढ़बैत नाग देवताक पूजा कयल जाइत अछि। एहि दिन नाग रुचावला दूध धानक लावा चढ़ेबाक मैथिल चलन अछि। लग पाँच लगते राखी रक्षाबंधन भदैया रवि कृष्णाष्टमी कुसुमावस्या चौठचंद्र इंद्रजात्रा पितृपक्ष जितिया दशहरा दीपावली छठि सहित पर्व एक के बाद दोसर अयबाक कारणे लग पाँचे के पर्व त्योहारक शुरू भेल सूचना मानल जाइत अछि। साउन भादवमे सर्प के सेहो अधिक भय होयबाक कारणे नागक पूजा करबाक आ नाग के खुशी बनेबाक लेल पूर्वज द्वारा ई परम्परा बैसाओल गेल संस्कृतिविद शीला ठाकुर बतौली। सभामुख डोल प्रसाद आर्याल प्रतिनिधि सभाक सदस्य संसद में उठाओल जिज्ञासाक उत्तर देबाक लेल प्रधानमंत्री के रूलिंग कयलनि अछि। विपक्षी दलक सांसद लोकनि एहिसँ पहिने अधिकांश बैठक में प्रधानमंत्री सँ जवाब अयबाक मांग सहित रूलिंग कयल अनुरोध करैत ओ आयल छलथि। सभामुख आर्याल प्रतिनिधि सभाक नियमावली 2083 के नियम 56, 57, 58, 59 आ 60 अनुसार प्रतिनिधि सभाक सदस्यक जवाब देबाक लेल प्रधानमंत्री के निर्देश कयलनि। एहिसँ पहिने आजुक बैठक में सेहो विपक्षी सांसद लोकनि उठि कऽ विरोध जनौने छलथि। विपक्षी सांसद सब विरोध जनौलाक बाद सभामुख आर्याल प्रतिनिधि सभाक नियमावली 2083 के नियम 56 अनुसार प्रधानमंत्री वा निजक कार्यक्षेत्र संग प्रत्यक्ष रूप में संबंधित महत्वपूर्ण विषय में प्रश्न पूछबाक लेल प्रत्येक मासक पहिल सप्ताहक कोनो एक दिन के बैठक के पहिल एक घंटा निर्धारण करबाक प्रावधान बमोजिम अपन गंभीर ध्यानाकर्षण भेल प्रश्न कयलनि। प्रतिनिधिसभाक आजुक बैठक में सांसद लोकनि जनजीविका आ अभिरुचि के विषय में सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। बैठक के सुन समय में सांसद लोकनि गैस सभा बाढ़ भूस्खलन प्रभावित के अवस्था बाढ़ सँ सड़क अवरुद्ध मल खाद अभाव सहित जनजीविका आ सरोकारक विषय में सांसद सब मार्फत सरकारक ध्यानाकर्षण कराओल गेल अछि। एहि तरह सांसद जगत प्रसाद जोशी सांसद जगत राज गिरी जगत सिंह धामी जयपति रुकाया छवि लाल डुमरे टीका संगरौला टेक बहादुर साके ठाकुरी सिंह थारू सांसद ठाकुर सिंह थारू सांसद डॉक्टर तारा प्रसाद जोशी सांसद तारा विश्वकर्मा सहित विभिन्न सांसद लोकनि अपन अपन समसामयिक विषय में सरकारक ध्यानाकर्षण करौने छलथि। राष्ट्र स्वतंत्र पार्टी रासपाक सचेतक प्रकाश चंद परियार नेपाल सँ मानव बीच विखन के घटना रोकबाक बदला एकर स्वरूप सेहो विस्तार होइत गेल कहि सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैठक में भाग लैत ओ लोकनि मानव बीच विखन सन अमानवीय राष्ट्र लज्जाक विषय के सरकार तत्काल संबोधन कयल जेबाक बात बतौलनि। सचेतक परियार विभिन्न प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक वर्ष 15,000 सँ अधिक नेपाली महिला बाल बालिका युवा बीच विखन के संग आधुनिक दास्ता के शिकार भऽ रहलाक कारणे एहि दिस सरकार गंभीर हेबाक बात पर जोर देलनि। ओ कहलनि काल्हि धरि भारतक कोठी में सीमित रहल ई अपराध आइ वैदेशिक रोजगारी अध्ययन वीसा सामाजिक संजालक दुरुपयोग करैत खाड़ी अफ्रीका एशियाक साइबर स्कैन सेंटर धरिक ई फैलल अछि। एहि अपराध के स्वरूप परिवर्तन हमरा सभक सुरक्षा प्रणालीक लेल भारी चुनौतीक विषय सेहो रहल अछि। सचेतक परियार गरीबी बेरोजगारी आवश्यक सूचना कमी खुला सीमाना अनुगमन में ढिलाई दलालक बदलत गेल शैली आ पहुँच के आधार पर अपराधी के संरक्षण देबाक प्रवृत्ति के कारण ई समस्या में कमी नहीं आबि चुकल ओ उल्लेख कयलनि। राष्ट्रसभाक बैठक के आजुक सुन समय में सांसद लोकन एहि विषय में राज्यसभाक अध्यक्ष मार्फत सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। सांसद गीता देवकोटा पारदर्शी वितरण प्रणाली कायम करबाक लेल कालाबाजारी नियंत्रण पर्याप्त गैस भंडार के व्यवस्था करबाक लेल मांग कयलनि। सांसद रंजीत कर्ण गैस अभाव के कारण दैनिक जीवन में समस्या अयलाक कारणे गैस के विकल्प खोजबाक बात बतौलनि। एहिना सांसद रोशनी मेचे
भोजन बनाबला गैस सहज रूप में उपलब्ध करेबाक लेल सरकार सँ मांग कलन। शून्य समय में सांसद लोकन रोलपा जाजरकोट सहितक जिला में प्राकृतिक विपद के कारण भेल जनधनक क्षतिप्रति दुख व्यक्त करैत प्रभावित तथा विस्थापित परिवार के राहत उपलब्ध करेबाक मांग कलन। सांसद मीना सिंह रखाल विपद केवल प्राकृतिक घटना नहीं भा पूर्व तैयारी उद्धार राज्यक तत्काल उपस्थितिक परीक्षा सेहो भेल बतौलन। सांसद चंद्र बहादुर खेसी प्रधानमंत्रीक सीमा संबंधी अभिव्यक्ति फिरता लेबाक लेल मांग कलन। सांसद राम कुमारी झांकड़ी शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न करेबाक लेल भूमिका खेल वाला गृहमंत्री आ सुरक्षाकर्मी ऊपर अनावश्यक लांछना लगाओल कहैत आपत्ति जनौलन। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल संग नेपालक लेल रोपेली संग यू के राजदूत भेरोनिक लोरेंजो शिष्टाचार भेट कलन अछि। सिंहदरबार स्थित शिक्षा मंत्रालय में आई भेल भेट में नेपाल आ यू बीचक लंबा समय सँ मैत्रीपूर्ण संबंध शिक्षा क्षेत्र में भऽ रहल सहकार तथा अगला दिन में सहयोग सहकार विस्तार कयल जा सकबाक क्षेत्रक विषय में छलफल भेल छल। ओहि अवसर पर मंत्री पोखरेल विद्यालय शिक्षाक सुधारक लेल मंत्रालय विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत काज आगू बढ़ा रहल जानकारी देलनि। ओ विद्यालय शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजक रूप में शिक्षा ऐन तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन आगू बढ़ाओल गेल आ सुधार कयल जेबाक विषय के सेहो समेटल गेल बतौलनि। मंत्री पोखरेल के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन के काज सेहो आगू बढ़ रहल अछि। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा में सुशासन सुधार कार्यकारी भूमिका संबंधी विद्यमान दुविधा अंत शिक्षक के पेशागत विकास तथा डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में सेहो मंत्रालय काज कर रहल ओ बतौलन। मंत्रालय आगू बढ़ाओल शिक्षा क्षेत्रक सुधारक विषय में उपयुक्त संदर्भ में यू सिंह सहकार करबाक लेल तैयार रहल मंत्री पोखरेल उल्लेख कयलनि। ओ प्रारंभिक बाल विकास ECD के शिक्षक के प्रारंभिक ऑटिज्म पहचान तथा स्क्रीनिंग संबंधी तालीम देवा कार्य के सेहो मंत्रालय प्राथमिकता में राखल जानकारी देलनि। एहि क्षेत्र में यू संघक सहकार के अगला दिन में निरंतरता देल जेबाक ओ विश्वास व्यक्त कयलनि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ देश में उत्पादित विद्युत नष्ट नहि हुए एहि अवस्था के अंत करबाक लेल मांग आपूर्ति विसंतुलन कायम कर प्रसारण संजाल आगू बढ़ेबाक बात बतौलन। मंत्री श्रेष्ठ नेपाल विद्युत प्राधिकरणक 41वां वार्षिकोत्सवक अवसर पर ओ विद्युत नष्ट नहि हेबाक अवस्था अंत आपूर्ति संतुलन कायम करबाक लेल मंत्रालयक स्पष्ट कार्ययोजना रहल उल्लेख कयलनि। अतिरिक्त विद्युत के तेसर बाजार में निर्यात कर वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण करैत जयबाक मार्ग में आगू बढ़ल छी ओ कहलनि। काल्हिक दिन में विद्युत के पहुंच विस्तार कयल जेबाक चुनौती छल। आइ ग्राहक के स्थायी विद्युत आपूर्ति चुनौतीपूर्ण देखल गेल अछि। दोसर के आ मंत्रालय के प्राथमिकता में वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में होइत जेबाक उल्लेख करैत मंत्री श्रेष्ठ कहलनि जे उपभोक्ता विद्युत पेबाक मात्र नहि भ स्थायी गुणस्तरीय आ अविच्छिन्न विद्युत सेवा पेबाक अवस्था सृजना करबाक बात ओ हमरा सभक धारणा रहल प्रश्न कयलनि। शिक्षा ऐन नियमावली संशोधन के लेल शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय सरकार वाला संग सुझाव संकलन करबाक लेल 7 प्रदेश में शिक्षा संवाद शुरू कयलक अछि। एहि क्रम में प्रधानाध्यापक संग नेपालक समन्वय में शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय जनकपुरधाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 6 धनसा स्थित श्री यागवल के संस्कृत माध्यमिक विद्यालय ज्ञानकूप में आयोजन कयल संवाद में सरोकार बाला सब सुझाव देलक अछि। कार्यक्रम में शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालयक सह सचिव तथा प्रवक्ता शिव कुमार सापकोटा सब सरोकार बाला संग संवाद कर आयल सुझावक आधार पर शिक्षा प्रणाली में सुधार कयल जेबाक बात बतौलनि। सह सचिव सापकोटा शिक्षा तथा विद्यालय कर्मचारी सभक सब समस्या समाधान का सम्मानक अनुभूति दिएबा सन सरकार अखुनका शिक्षा ऐन कानून संशोधन करय लागल स्पष्ट कयलनि। कार्यक्रम में शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रीक प्रमुख सलाहकार शैलेन्द्र झा सरकार शिक्षा क्षेत्रक सब समस्या के एकमुष्ट रूप में समाधान करबाक लेल शिक्षा ऐन आ शिक्षक कर्मचारी ऐन मिलाकर अलग अलग रूप में आनय लागल चर्चा करैत मधेशक विद्यालय सबके जस्ता पाता रहित आ पहाड़क विद्यालय के भूकंप प्रतिरोधात्मक बनावा लागल सलाहकार झा एहि के लेल अध्ययन भ रहल बतौलनि। कार्यक्रम में शिक्षाविद डॉक्टर विद्यानाथ कोइराला शिक्षा देखल गेल समस्या के सब मिलकर समाधान करबाक लेल संवाद शुरू कयल चर्चा करैत सरोकार वाला सभक सुझाव के आत्मसात कर सरकार शिक्षा सुधारक नीति अवलंबन कयल जेबाक उल्लेख कयलनि। ओहि अवसर पर शिक्षा सुधारक अभियंता डॉक्टर सूर्य यादव सामुदायिक विद्यालय में होबय वाला राजनीति के अंत कर विद्यालय व्यवस्थापन समिति हटेबाक सरकारक निर्णय सकारात्मक भेल बतबैत सामुदायिक विद्यालय के सुधार के लेल सरकार ठोस डेग उठेबाक बात बतौलनि।
मधेश प्रदेशक 8 जिलासँ 211 गोटे शिक्षा क्षेत्रक सरकारवालाक सहभागिता रहल कार्यक्रममे शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रक अन्य अगुवासभ शिक्षा सुधारक विभिन्न विषयमे धारणा तथा सुझाव रखने छलथि। रेडियो नेपालसँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषामे समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा में 10 भाद्र को प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ सांसदों का प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुआ तय। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री चित्तनारायण आचार्य ने विश्वास मत किया हासिल। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री इंद्र बहादुर बानिया ने दिया इस्तीफा। नए मुख्यमंत्री के लिए 4 भाद्र शाम 4 बजे तक दावा पेश करने को किया गया है आह्वान। श्रम मंत्रालय और नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघ के बीच सहमति। व्यवसायियों ने आंदोलन के सभी कार्यक्रम किए स्थगित। और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में एक होटल में आग लगने से 6 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा में आगामी 10 भाद्र को प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ सांसदों का प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय किया गया है। इससे पहले सभामुख टोल प्रसाद अर्याल ने सांसद की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री शाह को रूलिंग जारी की थी। सांसदों ने समसामयिक मुद्दों, प्रधानमंत्री के बयानों और सरकार की कार्यशैली को लेकर उठाए गए सवालों का उचित जवाब न मिलने पर सदन का ध्यान आकर्षण कराया था। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में खान तथा खनिज पदार्थ विधेयक 2083 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ। इससे पहले 26 सावन की बैठक में गणपूरक संख्या न पहुंचने के कारण इस पर निर्णय नहीं हो सका था। बैठक में महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक और सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीता वादी ने बाल बालिका संबंधी पहला संशोधन विधेयक 2083 पेश किया। वहीं मानव तस्करी तथा ओसार पसार नियंत्रण संबंधी पहले संशोधन विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। इससे पहले सांसदों ने लगातार बारिश के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ और भूस्खलन से हुई जनधन की क्षति पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने जोखिम वाले बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने, प्रभावितों का तत्काल उद्धार और राहत तथा घायलों के उपचार की मांग की। सांसदों ने बताया कि रोलपा के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले 2 सप्ताह में भूस्खलन से 22 लोगों की मौत और 2 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने लापता लोगों की तलाश तेज करने और प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत पहुंचाने की मांग की। इसके अलावा बाढ़ और भूस्खलन से सड़क, पेयजल और बिजली संरचनाओं को हुए नुकसान तथा लंबे समय से जारी एलपी गैस की कमी पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। विदेश में मृत नेपाली नागरिकों के शव नेपाल लाने में हो रही देरी और जाजरकोट भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास के मुद्दे पर सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने सरकार को 3 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में संक्रामक पशु रोग नियंत्रण विधेयक 2083 को दफावार चर्चा के लिए विधायन व्यवस्थापन समिति में भेजने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। युवा श्रम तथा रोजगार मंत्री रामजी यादव ने कहा कि युवाओं के पलायन को रोकने और देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नई रोजगार नीति और कानून बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार मूलक कौशल, उद्यमशीलता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीक से जुड़े प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है। बैठक में सांसदों ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित लोगों के लिए तत्काल राहत और बचाव कार्य तेज करने तथा आम नागरिकों को खाना पकाने की गैस आसानी से उपलब्ध कराने की मांग भी की। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक 3 भाद्र को दोपहर 1:15 पर होगी। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री चित्तनारायण आचार्य ने प्रदेश सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। आज हुई मतदान प्रक्रिया में उनके पक्ष में 45 और विपक्ष में 26 मत पड़े। 83 सदस्यीय प्रदेश सभा में 71 सांसदों ने मतदान किया था। आचार्य को नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनमोर्चा और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल का समर्थन मिला। नेपाली कांग्रेस द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद मुख्यमंत्री आचार्य ने संवैधानिक प्रावधान के अनुसार विश्वास मत लिया था। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: बाजु दर्शन
2: भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
1: हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
3: नमस्ते बाबुजी।
2: नमस्ते, आउनु न भित्रै।
3: हुन्छ बाबुजी।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् भाउजू।
4: ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: है त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
3: ए हो र,
1: एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
0: अब बाकी समाचार। बागमती प्रदेश के प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा ने नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए 4 भाद्र गुरुवार शाम 4 बजे तक दावा पेश करने का आह्वान किया है। संविधान के अनुसार प्रदेश सभा में 2 या 2 से अधिक दलों के समर्थन से बहुमत जुटाने वाले सदस्य मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश कर सकते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री इंद्र बहादुर बानिया ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेकपा एमाले द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। युवा श्रम तथा रोजगार मंत्रालय और नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ के बीच सहमति के बाद व्यवसायियों ने अपने सभी आंदोलन स्थगित कर दिए हैं। सरकार और व्यवसायियों ने वैदेशिक रोजगार को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए वैदेशिक रोजगार कानून और नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने पर सहमति जताई है। संघ की ओर से रखी गई 15 मांगों में से अधिकांश को कानून और नियमावली संशोधन की प्रक्रिया में शामिल करने पर भी सहमति बनी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना के मानद महारथी का दर्जा प्रदान किया है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति पौडेल ने जनरल सेठ को मानद महारथी का दर्जानी चिन्ह प्रदान किया। नेपाल और भारत के बीच सन 1950 से एक दूसरे के सेना प्रमुखों को यह सम्मान देने की परंपरा रही है। 3 दिवसीय नेपाल दौरे पर जनरल सेठ रविवार को काठमांडू पहुंचे थे। समारोह में उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल सरकार और नेपाली सेना के वरिष्ठ अधिकारी तथा नेपाल में भारत के राजदूत मौजूद रहे। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण ने सुदूर पश्चिम और कर्णाली प्रदेश में आज रात से अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। प्राधिकरण के मुताबिक भारी बारिश वाले क्षेत्रों में खोज और बचाव के लिए 600 से अधिक लोगों को तैयार रखा गया है। इस साल मानसून शुरू होने के बाद 2 महीनों में देश भर में बाढ़, भूस्खलन और डूबान समेत 1372 मानसून जन्य घटनाएं हुई। इनमें जाजरकोट, ट्रोलपा और बाजुरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 60 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लोग अभी भी लापता हैं। काबरे पलांचोक की खानीखोला गांव पालिका 1 सैउथली में जीप दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान खानीखोला 2 की 24 वर्षीय अनिता मोक्तान और खानीखोला 4 की 61 वर्षीय कलक बहादुर माझी के रूप में हुई है। दुर्घटना में घायल 5 लोगों को हेलीकॉप्टर से उद्धार कर इलाज के लिए धूलीखेल अस्पताल लाया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में जीप का ब्रेक फेल होने के कारण दुर्घटना होने की आशंका की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के तारापीठ में आज तड़के एक होटल में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी दी है कि हादसे में कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। होटल मालिक कल्याण पाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बीरभूम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलेश श्रीकांत गायकवाड़ ने पत्रकारों को बताया है कि अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 12 लोगों को रामपुर हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने 7 लोगों की मौत का दावा किया है। पुलिस ने अब तक 7वीं मौत की पुष्टि नहीं की है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद होटल में राहत और बचाव अभियान चलाया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा में 10 भाद्र को प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ सांसदों का प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुआ तय। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री चेत नारायण आचार्य ने विश्वास मत किया हासिल। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री इंद्र बहादुर बानिया ने दिया इस्तीफा। नए मुख्यमंत्री के लिए 4 भाद्र शाम 4 बजे तक दावा पेश करने को किया गया है आह्वान। श्रम मंत्रालय और नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ के बीच हुई सहमति। व्यवसायियों ने आंदोलन के सभी कार्यक्रम किए स्थगित और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में एक होटल में आग लगने से 6 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
5: झण्डु आयुर्वेद।
1: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
5: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
1: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
5: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
1: झण्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01 45 30 418।

भी एक सी हो बता दे। राधा गोविंद गीत। वेदले जस्तो भक्ति भगवान को गर्छौ त्यस्तै भक्ति गुरु को पनि गर, किनकि गुरु भगवान के प्राकृत स्वरूप हो, जसलाई जीवात्मा को प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धिले सजिलै ग्रहण गर्न सक्छ। गुरुप्रति को सच्चा निष्ठाले नै विस्तारै जीव को अन्तःकरण शुद्ध हुँदै जान्छ र दिव्य बन्छ। पश्चात दिव्य मनमा गुरुले भगवान को दिव्य प्रेम प्रदान गर्छन्। सद्गुरु भगवान को चरण में सभक्ति प्रणाम गर्दै कार्यक्रम अध्यात्म सन्देश को आज को बिहानी में यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं राधे राधे।